ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। कुमामोतो प्रिफेक्चर की हुकूमत का कहना है कि 28 जुलाई को आने वाले शदीद जल्जले के नतीजे में 38 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। प्रिफेक्चर के डिजास्टर रिस्पांस हेडक्वार्टर्स ने मैग्नीट्यूड 7.1 के जल्जले से होने वाले नुकसान के आदाद शुमार जारी किए हैं। इनकी तस्दीक जुमेरात की सुबह 7:30 बजे तक हो चुकी थी। इतवार के बाद से हलाकतों की तादाद में कोई तब्दीली नहीं आई है। हुकाम का कहना है कि इन आदाद व शुमार में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिसके बारे में शुबा है कि वह आफत के बाद की वजूहात से जान की बाजी हार गया। आदाद व शुमार से मालूम हुआ है कि 6,899 अफराद प्रीफेक्चर के 130 इनखलाई पनाहगाहों में मुकीम हैं। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मस में जहाजरानी के रास्ते पर एक मुहायदे के करीब हैं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बुकाई ने बुध के रोज कहा कि वो एक मुश्तरका बयान को हतमी शक्ल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्रिकैन रूट के जोग्राफियाई मुतनासिक यानी हदूद अरबा पर समझौते पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि मखसूस तीसरे फरीक इस अमल में रुकावट न डालें। बुकाई ने कहा कि ईरान ने तकनीकी सलामती और दीगर अमूर का जायजा लिया है। उन्होंने आबनाई की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को ठहराते हुए कहा कि उनकी फौजी जारहियत का नतीजा है। तर्जुमान ने कहा कि सिर्फ ईरान और ओमान के दरमियान ये समझौता आबनाई में महफूज जहाजरानी को यकीनी नहीं बना सकता, क्योंकि अमरीका अब भी सलामती के लिए खतरा है। अमरीका चीन पर तिजारती पाबंदियों को बढ़ाता आया है और अब बीजिंग में हुकाम का कहना है कि वो जवाबी इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वह अमरीका के लिए ड्रोन्स पर बरामदी कंट्रोल सख्त कर रहे हैं। हुकाम ने बुध को जाब्तों के बारे में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ड्रोन्स कलीदी पुर्जाजात और मुतालिका टेक्नोलॉजी समेत सिविलियन और फौजी दोनों शोबों में काबिल इस्तेमाल बावर की जाने वाली बरामदात को सख्त निगरानी का सामना करना पड़ेगा। बीजिंग ने 6 ऐसी अमरीकी तंजीमों पर भी पाबंदियां आयद की हैं जिन पर उसने चीन के सिंकियांग विगौर नीम खुद मुख्तार इलाके पर गैर कानूनी अमरीकी पाबंदियों की हिमायत करने का इल्जाम लगाया है। इसके नतीजे में इन कंपनियों के चीनी तंजीमों और अफराद के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लग गई है। चीनी